संत कबीरदास जी महाराज ने प्रेम की परिभाषा बताते हुए कहा, जंगल में एक हिरण और हिरणी का जोड़ा रहता था। एक दिन शिकारी उस जंगल में आया और शिकार पकड़ने के लिए जंगल में एक फंदा लगाया। इधर हिरण और हिरणी जंगल में हंसते खेलते विचरण करते हुए उस फंदे के पास आ पहुंचे और हिरण का पांव उस फंदे में फंस गया। जैसे ही उस हिरण का पांव उस फंदे में फंसा, वो चिल्लाने लगा, रोने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनते ही सारे जीव जंतु और जानवर जंगल में भाग गए, परंतु प्रेम के धागों से बंधी उसकी हिरणी उसको छोड़कर नहीं गई। उसके पास खड़ी होकर भगवान से करुणा पुकार करने लगी, भगवान के आगे रोने लगी, मारे पिया जीरा प्राण बचा, आ हिरणी हरिसु अर्ज करे।

तू धीरज मत खोए, तू तो कूद जंगल में रड़ जा, हरी करे सो होए। हे प्यारी, जो भगवान ने लिखा है वही होगा। तू मेरे लिए दुखी मत हो, कम से कम तू अपने प्राणों को बचाकर भाग जा। वे शिकारी अपने शिकार को ढूंढता हुआ आता ही होगा। वे हिरण बार बार हिरणी से निवेदन करने लगा, तू मेरे साथ अपने प्राणों को मत गवा प्यारी। पर वे हिरणी एक नहीं मानी और कहा कि हे प्रियवर, शिवाय तुम्हारे मेरा इस जंगल में क्या है। और भगवान के आगे रोते रोते पुकार करने लगी, हे प्रभु, तीन पाव पर खड़ी मृगली हरिसु हेत लगाए, और हरी रोज सिंहासन डोल्यो बावरिया ने विष खाए। हिरणी की आंखों में आंसू देकर और अपने प्रीतम के लिए अपार प्रेम देकर भगवान को बड़ी दया आई और उसकी पुकार सुनी, और धीरे धीरे हिरण के फंदे खुलने लगे। तब कबीरदास जी महाराज ने कहा,

श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। आप सबका उमंग कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आइए हमेशा की तरह पहले सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ाबम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। लिखा है, किसी का भी उदय अचानक नहीं होता, उसमें समय, धैर्य और तपस्या की जरूरत होती है। धन्यवाद आप दोनों का। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। छत्तीसगढ़ सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू जी ने लिखा है, प्रिय उद्घोषक जी, मन से नमस्कार। आप दोनों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और ज्ञानवर्धक बात बताई। आपका संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद। करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू ने लिखा है, उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से हमें भरपूर मनोरंजन तो होता ही है और इससे हमें सीख व प्रेरणा भी मिलती है। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए पूरी टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद। आपका भी संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में अब आप सबका स्वागत है। इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी कुछ घटनाएं और कुछ लोक कथाएं। ये लोक कथाएं कुछ ऐसी हैं जिन्हें सुनकर यदि आप कभी किसी पेड़ के पास से गुजरें तो आप उसे सिर्फ एक पेड़ नहीं समझेंगे, आपके देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। आपने अक्सर उत्तराखंड के चिपकू आंदोलन और उससे जुड़ी गौरा देवी के बारे में जरूर सुना होगा। इस पर हमारा कार्यक्रम भी है, लेकिन आज हम बात करेंगे चिपकू आंदोलन मूल रूप से कब शुरू हुआ। आज की कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव खेजड़ली की और एक ऐसी महिला की जिसने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन तक न्योछावर कर दिया। कहानी लगभग 300 साल पुरानी है। सन 1730 की बात है। राजस्थान की गर्म और रेगिस्तानी धरती, चारों ओर रेत और उस धरती पर जीवन का सहारा बने हुए थे खेजड़ी के पेड़। एक दिन गांव में कुछ लोग पहुंचे, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां थीं। उन्हें वहां के राजा अभय सिंह के द्वारा पेड़ों को काटने का आदेश मिला था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। गांव की एक महिला उनके सामने आ खड़ी हुई। उसका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। उन्होंने पेड़ को अपनी बाहों में भर लिया और पेड़ काटने वालों से कहा, पेड़ को काटना है तो पहले मुझे काटना होगा। जरा सोचिए श्रोताओं, क्या दृश्य रहा होगा। सामने कुल्हाड़ी लिए लोग और दूसरी ओर एक निहत्थी महिला। पेड़ काटने वालों ने उसे धमकाया, लेकिन अमृता देवी पीछे नहीं हटी। उनकी तीन बेटियां भी अपनी माँ के साथ खड़ी हो गईं और फिर जो हुआ वो भारतीय पर्यावरण इतिहास की अमर घटना बन गया। अमृता देवी का दृढ़ संकल्प देखकर गांव के लोग भी आने लगे और एक एक करके पेड़ों से चिपकने लगे। किसी ने कहा, ये पेड़ हमारे पशुओं का चारा है। किसी ने कहा, ये हमारे जीवन का सहारा है। और किसी ने शायद ये महसूस किया कि पेड़ कटेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी कट जाएगा। श्रोताओं, इसके बाद शुरू हुआ क्रूर संहार। इस बेहद दुखद आंदोलन में 363 बिश्नोई लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। जब ये समाचार महाराजा तक पहुंचा तो वे सन्न रह गए और शोक में डूब गए। अंततः खेजड़ली क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई। साथियों, आज से लगभग 300 साल पहले, जब पर्यावरण संरक्षण जैसे शब्द आम बातचीत का हिस्सा भी नहीं थे, तब इन लोगों ने प्रकृति के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। हम आज कहते हैं पेड़ बचाओ, पानी बचाओ। सोशल मीडिया पर, अखबारों में ये संदेश भरे पड़े हैं। बड़ी बड़ी कार्यशालाएं होती हैं, उपदेश होते हैं और जिसमें लोग कहते हैं पर्यावरण बचाओ, लेकिन अमृता देवी ने केवल कहा ही नहीं था, उन्होंने करके दिखाया था। अंग्रेजी की एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, यानी हमारे शब्दों से ज्यादा हमारी खामोशी में किए गए कार्य बोलते हैं। तो श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम के द्वारा आज हम विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि अगली बार जब आप किसी पेड़ की छाया में बैठें, उसके फल खाएं, उसकी ठंडी हवा को महसूस करें, तो एक पल के लिए राजस्थान की खेजड़ली गाँव की उस महिला अमृता देवी बिश्नोई को जरूर याद कीजिएगा, जिनके लिए पेड़ केवल लकड़ी मात्र नहीं थे लेकिन वो जीवन का आधार थे। आइए सोचें, पेड़ हमारी सांस हैं, हमारे लिए शीतल छाया हैं, वे हमारे जल और मिट्टी के रक्षक हैं और सबसे बढ़कर वे आने वाली पीढ़ियों की विरासत हैं। तो आज हम उमंग कार्यक्रम

0: में मन की उमंग से चलते चलते एक छोटा सा संकल्प क्यों न लें। एक पेड़ को केवल लगाएंगे नहीं, उसे बड़ा भी करेंगे और उसे बचाएंगे भी। एक नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी तर्ज पर आज हम उमंग कार्यक्रम की ओर से एक नया नारा देना चाहेंगे, पेड़ लगाओ पेड़ बढ़ाओ पेड़ बचाओ। और शायद ही यही चिपको आंदोलन की मूल माता अमृता देवी बिश्नोई को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अमृता देवी की कहानी पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में पेड़ बचाने के लिए अपना जीवन देने का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। बता दें, देश ने उनके अतुल्य बलिदान को नहीं भुलाया। आज भारत सरकार का अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, विशेषकर वन और वन्य जीवन संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी प्रस्तुति जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा फेसबुक एक्स और लिंक्डइन पर भी ताजा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है द क्रो। कक्षा 2 की अंग्रेजी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में संदेश दिया गया है कि हम अपने मूल स्वरूप में ही अच्छे हैं, किसी और से हमें अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए।
1: हेलो चिल्ड्रन।
2: हेलो मैम।
3: हेलो मैम।
1: हेलो हेलो, हाउ आर यू ऑल?
2: वी आर फाइन मैम।
3: आई एम फाइन मैम, हाउ आर यू मैम?
1: आई एम गुड, थैंक यू सो मच वान्या। ऑलराइट, सो चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग विद यू। आर यू रेडी?
2: यस
3: मैम।
1: ऑलराइट, you all know that pets are special members of our family, isn't it?
2: Yes,
4: pets are so lovely.
1: Right, Soham.
5: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
1: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
5: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
1: Wow, that's good. And what about you, Navya?
6: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
1: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
7: Ma'am, when I come home, my cat jumps and sits on my lap.
1: Oh, that's so exciting, isn't it?
2: Yes, ma'am.
1: All right. So, we spoke about our animals. What about birds? Do you like birds?
2: Yes, ma'am.
1: Can you name some birds?
3: Sparrow.
1: Okay, Vanya. Good. That's a beautiful small bird. Okay, Soham, you tell.
5: Peacock. It dances so well. It looks so pretty.
1: Yes, peacock is a colorful bird.
5: Ma'am, parrot.
1: Oh, yes. Parrot is a mimic bird. But, children, you have missed a bird. Do you know which bird is missing?
8: Any guesses?
1: Okay, I'll give you a clue. It calls... Absolutely right. Children, I remember a lovely story of a crow. Would you like to listen?
2: Yes, ma'am.
3: It will be fun.
1: So, I'll narrate the poem. Repeat after me. There once was a crow. He was black.
2: As you know.
1: How to be beautiful. He wanted to know. Colorful feathers. He wanted to grow. he found one peacock feather.

0: Good.
1: Yes, ma'am.
0: Good. The bird is parrot. Tell me the color.
1: Mummy, right.
0: Now, Soham will tell.
2: Green.
3: Yes, it is green. Yes.
0: Right. Now, listen to the sound of parrot. The next bird is sparrow. Now, tell me the color. Who will tell?
3: Mummy.
0: Navya, Vahanya, Soham.
1: Me.
0: Me. Lavish.
4: Mem brown.
0: You're right. Sparrow has mostly three colors. Brown, white and
3: black.
0: Right.
1: Crow is also black, ma'am.
0: Yes, black is a beautiful color. And now listen to how crow sounds.
3: Ah! Ah!
0: Now you all know about the sounds of birds.
3: Great.
1: Yes, ma'am.
0: So children, did you like the poem?
3: Yes, ma'am.
5: We loved it.
0: Okay. And the song and the little game of birds?
3: Yes, ma'am.
0: Then let's clap for each other. Yay!
6: और अब सुनते हैं कार्यक्रम सिस्टर निवेदिता। ये कार्यक्रम बंगाल की उल्लेखनीय शिक्षाविद भगिनी निवेदिता के जीवन और उनके योगदान के बारे में जानकारी देता है। कार्यक्रम बताता है कि किस प्रकार वे श्रीमती मार्गरेट नोबल के रूप में भारत में आईं और स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनकर भगिनी निवेदिता कहलाईं।
7: उत्तरी कलकत्ता के बाग बाजार मोहल्ले में एक विद्यालय है। श्री रामकृष्ण शारदा मिशन सिस्टर निवेदिता गर्ल्स स्कूल। वैसे तो हमारे देश में दूसरे विद्यालयों की ही तरह ये भी एक साधारण सा विद्यालय है, लेकिन कुछ अर्थों में ये बड़ा असाधारण भी है। जानते हो क्यों? क्योंकि इस विद्यालय का प्रारंभ कुछ असाधारण लोगों के द्वारा बड़ी ही असाधारण परिस्थितियों में किया गया था। सुनना चाहते हो इसकी कहानी?

0: उनके साथ एक अंग्रेज मेम साहब भी है।
1: अरे तो उन्हें बाहर क्यों खड़ा करके आया? जरा मेरी शॉल तो दे लो।
0: अच्छा बाबू।
1: और सुन
0: जी,
1: मालकिन से कह देना कि तैयार रहेगी। हैं? भगिनी निवेदिता
0: हैं?
1: अरे वही अंग्रेज मेम साहब, शायद तेरी मालकिन और चुन्नी दीदी से मिलना चाहें।
0: क्या कह रहे हैं बाबू, मालकिन भला मेम साहब से कैसे बात करेंगी? वो क्या अंग्रेजी पढ़ी लिखी है?
1: इसकी चिंता मत कर माधो, ये मेम साहब दूसरी मेमो जैसी नहीं है।
0: अच्छा?
1: हाँ, बंगला बोल लेती है।
0: ओ।
1: बड़ी नेम धर्म वाली है, स्वामी विवेकानंद की खास शिष्या है।
0: अच्छा?
1: अपना घर बार छोड़कर 100 समुंदर पार से यहाँ आई है, हमारी लड़कियों को पढ़ाएंगी, यहाँ कलकत्ते में एक कन्या पाठशाला खोलेंगी।
0: वो तो ठीक है, पर बाबू।
1: अरे दुष्ट, स्वामी जी को दरवाजे पर खड़ा कर रखा है और यहाँ पर कर रहा है। जा भाग यहाँ से।
0: अच्छा,
1: पहले मैं उन्हें भीतर ले आऊं। आइए आइए स्वामी जी, भीतर आइए। धन्य भाग है हमारे जो आपकी चरण रज से मेरा घर पवित्र हुआ।
2: अरे अरे, ये क्या करते हैं बोस बाबू? उठिए उठिए, माँ काली आपका कल्याण करे, इनसे मिलिए। यही वो आयरिश महिला है मिस मार्गरेट नोबल, जिनके विषय में मैंने आपसे चर्चा की थी।
1: कुटिया में आपका हार्दिक स्वागत है मिस नोबल।
3: धन्यवाद बोस बाबू, किंतु आप यदि मुझे स्वामी जी के दिए हुए नाम से पुकारें तो मुझे अधिक प्रसन्नता होगी।
1: यदि ऐसा है तब मैं आपको सिस्टर निवेदिता ही कहूँगा। आइए स्वामी जी, यहाँ बैठिए। आप भी बैठिए सिस्टर।
3: धन्यवाद।
2: अब बताइए बोस बाबू
1: जी,
2: क्या सलाह है? इधर बाग बाजार

0: बिहार में स्कूल खोलने पर यहाँ के लोग अपनी लड़कियों को पढ़ने भेजेंगे या नहीं?
1: देखिए स्वामी जी, मैंने इस बारे में कई लोगों से बात की है। जो लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाना भी चाहते हैं, वो भी समाज के डर से उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है।
2: अरे, अगर कोई आदमी अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना चाहता है तो इसमें समाज का क्या नुकसान है?
1: नुकसान तो है सिस्टर, पुराने लोगों को डर है कि यदि लड़कियां पढ़ गईं तो फिर अपनी बुद्धि से सोच सकेंगी, अपना भला बुरा समझ सकेंगी, तब वे समाज से अपनी दुर्दशा का कारण पूछने लगेंगी, समाज की हर गलत सही और उल्टी सीधी प्रथा को मानने से इनकार करने लगेंगी, तब फिर इस अंधे समाज का क्या होगा? समाज में तो हाहाकार मच जाएगा ना।
2: कैसी बातें कर रहे हैं आप बोस बाबू, जब परिवार की बहु बेटियां पढ़ी लिखी होंगी तो उससे तो पूरे समाज का लाभ होगा ना।
1: देखिए सिस्टर, ये बात मैं समझता हूँ, कुछ और पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग न तो इस बात को समझता है और न मानने को तैयार है।
2: तो क्या ये स्कूल नहीं खुल सकेगा?
0: खुल सकेगा और खुलेगा। जिस कार्य के लिए तुमने इतना बड़ा त्याग किया है, माँ बहन भाई मित्र सहयोगी सब छोड़ छाड़ कर यहाँ आई हो, तुम्हारा वो कार्य अवश्य सिद्ध होगा, तुम्हारा विद्यालय अवश्य खुलेगा।
2: लेकिन वो शुभ दिन कब आएगा स्वामी जी?
0: उतावली ना हो निवेदिता, हर काम का समय निश्चित होता है। हाँ तो बोस बाबू जी, यही बोसपाड़ा में अगर कोई छोटा मोटा मकान किराए पर मिल जाए तो उसमें निवेदिता अपना विद्यालय खोल सकेंगी।
1: मकान की व्यवस्था आप मेरे जिम्मे छोड़ दीजिए स्वामी जी, किंतु मेम साहब के पास घर का कामकाज करने के लिए कोई स्त्री तैयार होगी या नहीं इस विषय में?
0: वो व्यवस्था हो गई है, माँ शारदा मणि के पास एक वृद्धा ब्राह्मणी आती थी, गोपाल की माँ, उससे माँ ने कहा तो वो निवेदिता का खाना बनाने और घर द्वार संभालने के लिए राजी हो गई।
1: चलिए, तब तो ये चिंता भी दूर हुई, अब केवल आपके लिए छात्राओं की व्यवस्था कर दी है। वैसे एक छात्रा तो मेरे घर में भी है, मेरी छोटी लड़की चुन्नी। मैं चाहता हूँ कि वो भी कुछ पढ़ना लिखना सीख ले, पर उसकी माँ किसी भी तरह तैयार नहीं होती, कहती है कि अगर चुन्नी पढ़ लिख गई तो फिर कोई उससे शादी नहीं करेगा।
2: अरे वाह, ये तो उल्टी बात हुई। आजकल के पढ़े लिखे युवक तो चाहते हैं कि उनकी पत्नी भी पढ़ी हो। बोस बाबू, आप मुझे एक बार मिसेस बोस से मिलवा सकते हैं, शायद मैं उन्हें चुन्नी को स्कूल भेजने के लिए राजी कर सकूं।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए मैं आपको भीतर ले चलता हूँ।
0: जाओ निवेदिता, शायद ये चुन्नी ही तुम्हारी पहली शिष्या हो।
3: इस तरह स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से और बलराम बोस जैसे कुछ और समझदार लोगों के सहयोग से 13 नवंबर 1898 को बाग बाजार के बोसपाड़ा लेन के एक छोटे से मकान में निवेदिता ने अपनी कन्या पाठशाला का शुभारंभ किया। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी माँ शारदा मणि भी इस अवसर पर उपस्थित थी। निवेदिता अपनी थोड़ी सी छात्राओं को केवल लिखना पढ़ना ही नहीं अपितु चित्र बनाना, सीना पिरोना, हिसाब किताब रखना, सभी कुछ सिखाकर उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना चाहती थी। लेकिन परंपरागत शिक्षा के आदि लड़कियों के माता पिता शिक्षा के इस ढंग को बिल्कुल समझ नहीं पाए।
4: गुड मॉर्निंग गर्ल्स।
5: गुड मॉर्निंग दीदी।
2: ये सुभाषिनी आज फिर नहीं आई, क्या बात है, बीमार तो नहीं पड़ गई? चारू, तुम गई थी उसके घर?
6: हाँ दीदी, आज मैं उसके घर गई थी। उसकी माँ कहने लगी, इश, ये कैसा स्कूल है जी तुम्हारा, वहाँ हम लड़की को पढ़ने भेजते हैं या खिलौनों से खेलने?
2: फिर तुमने क्या कहा?
6: मैंने कहा कि हमारी निवेदिता दीदी खिलौनों से खेलने को कहती हैं, और फिर ना जाने कैसे खेल खेल में हमें बहुत सारी बातें सिखा देती हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता। इस पर वो बोली कि आज वो स्वयं आपसे मिलने आएंगी।
2: अच्छा ठीक है, तुम तो आज हमें अल्पना बनाकर दिखाने वाली थी ना चारू?
6: हाँ दीदी।
2: ये लो कागज और रंगीन पेंसिल, एक सुंदर सी अल्पना बनाकर उस पर अपना नाम लिखो। और चुन्नी, तुम मुझे कल वाली कविता सुनाओ। तो
7: क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
6: दीदी, ये माशी माँ है, सुभाषित

0: आइए आइए ना माँ, वहाँ द्वार पर ही क्यों खड़े हैं, भीतर आइए ना। जाते चारू, मासी माँ के लिए एक आसन तो ले आ।
1: अच्छा दीदी।
0: नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ।
2: नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप हमारे विद्यालय की पहली अतिथि हैं, हम आपको ऐसे खड़े खड़े थोड़ी लौट जाने देंगे।
1: दीदी ये लीजिए आसन।
2: बैठिए ना माँ। सुभाषिनी कहती है आप बहुत सुंदर गाती हैं, आप हमारी लड़कियों को चंडीदास के एक दो गीत जरूर सुनाकर जाइएगा।
0: किंतु मेरे गाने से इनकी पढ़ाई का हर्ज नहीं होगा।
2: क्या कहती हैं माँ, आप गीता भागवत का पाठ करती हैं तो उनसे आपको कुछ नहीं मिलता।
0: क्यों नहीं मिलता, जो गीता का उपदेश समझ ले उसका तो जीवन ही सुधर जाए।
2: वही तो मैं भी कहती हूँ, शिक्षा का मतलब केवल अक्षर ज्ञान थोड़ी है, शिक्षा का मतलब है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। आप जो घर में सुभाषिनी को अल्पना बनाना सिखाती हैं, उसे पहनने ओढ़ने का सलीका सिखाती हैं, वो भी तो शिक्षा ही है ना माँ।
0: हाँ सो तो है,
2: मेरी लड़कियाँ जीवन के हर पक्ष से, हर रंग से शिक्षा प्राप्त करती हैं, मैंने इसीलिए ये स्कूल खोला है माँ।
0: अच्छा आजकल सुभाषिनी नहीं आ रही, तबीयत तो ठीक है ना उसकी?
1: तबीयत तो ठीक है।
0: अच्छा मीम दीदी अब मैं चलूंगी, कल से सुभाषिनी स्कूल आएगी और मैं देखूंगी आस पड़ोस की और लड़कियां भी राजी हो जाएं तो।
2: ये तो बड़ा उपकार होगा मुझ पर।
3: निवेदिता के सौम्य सहज और स्नेहपूर्ण व्यवहार से उनके विद्यालय की छात्राएं और आस पड़ोस की स्त्रियां बड़ी प्रभावित हुईं।

उन्होंने कलकत्ता में स्त्री शिक्षा का जो नन्ना सा दीप जलाया था वो बढ़कर एक अखंड ज्योति में परिवर्तित हो गया। पर निवेदिता सिर्फ इतने से ही संतुष्ट नहीं थी, वे चाहती थी कि भारत मुक्त हो, अज्ञान से मुक्त हो, निर्धनता से मुक्त हो और विदेशी दासता से मुक्त हो। उनका घर बंगाल के कितने ही क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल था और उस समय जब वंदे मातरम का उच्चारण भी अपराध समझा जाता था, निवेदिता के विद्यालय में प्रतिदिन सरस्वती वंदना के साथ वंदे मातरम का स्वर भी गूंजता था।

अरे इतना ज्यादा शोर, पार्वती आई उस ओर। डरकर माता उमा के आगे दुम दबाकर मूषक भागे, पर अपनी धुन में मस्त गजानन थिरक रहे हैं

रहे, मस्त रहे, समर्थ रहे, ऑनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

तो श्रोता मित्रों, रेडियो पालनपुर बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट केड़वणी मंडल संचालित आप सौनो आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर हूँ आरजी एआर आप सौ माटे दर अठवाडिये लईने आवुं छुं डॉलर बहु नवलकथाना अंशो, जेना लेखिका सुधा मूर्ति ने जेनो गुजराती में अनुवाद सुधा मेहताए कर्यो छे। आ सुंदर नवलकथा अने पारिवारिक अनुभव, विदेशनी गेलछा, बधी ज वातोमांथी तमने पण तमारी आजूबाजूना केटलाक सभ्यो, केटलाक परिवारना सभ्यो, केटलाक अनुभवो, केटलाक मित्रोनी वातो, केटलीक तमारी साथे अत्यारे वहेंचाती वातो याद आवी जती होय तो तमारे ते बधी ज वातोने संग्रह करी तमारा मनमां, तमारा शब्दोमां के तमारा अवाजमां मने मोकली आपवानी छे। आ माटे तमारे माटे अमे एक ऑप्शन एटले के 9512966688 व्हाट्सएप नो ऑप्शन छे। अहीं रेकॉर्ड करीने के तमारो संदेशो टेक्स्ट मेसेजेस थी तमारे मात्र व्हाट्सएप करीने मोकलवानो छे। याद रखो आ नंबर व्हाट्सएप नंबर छे। आ साथे तमे अमारा सोशल मीडियाना कोईपण एकाउंट एटले के फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के पछी एक्स पर रेडियो पालनपुर लखीने आईडी पर तमे तमारा कमेंट बॉक्समांथी अमने मेसेजेस, संदेशाओ मोकली शको छो। आ सिवाय आ मीडियम आ माध्यम पर जवा माटे तमे अमारी मोबाइल एप्लिकेशन गूगल प्ले स्टोर अने आईफोन होय तो आईट्यून स्टोर परथी डाउनलॉड करो। आ सिवाय पण तमे ज्यां सुधी आ अवाजने पहोंचाडवा इच्छता हो इंटरनेटना माध्यमथी के तमारा सुधी आ अवाजने पकड़ी राखवा, जकड़ी राखवा मांगता हो तो तमे इंटरनेटना माध्यमथी रेडियो गार्डन पर जई अने अमने सांभळी शको छो। फरी मळीशुं आवता अठवाडिये आ नवलकथाना अंशो साथे। त्यां सुधी મસ્ત રહો, વ્યસ્ત રહો અને સાંભળતા રહો રેડિયો પાલનપુર 90.4 મેગાહર્ટ્ઝ।

नमस्कार, मैं हूं आरजे अंजलि और आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर। एक आदमी सुबह को समुद्र के किनारे टहल रहा था। उसने देखा कि लहरों के साथ सैकड़ों स्टार मछलियां भी तट पर आ जाती है। जब लहरें पीछे जाती है तो मछलियां किनारे पर ही रह जाती है और धूप से मर जाती है। लहरें उसी समय लौटी थी और स्टार मछलियां अभी जीवित थी। वह आदमी कुछ कदम आगे बढ़ा। उसने एक मछली उठाई और पानी में फेंक दी। वह ऐसा बार बार करता रहा। उस आदमी के ठीक पीछे एक और आदमी था जो यह नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या कर रहा है। वह उसके पास आया और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ तो सैकड़ों स्टार मछलियां हैं, तुम कितनों को बचा सकोगे? तुम्हारे ऐसा करने से क्या फर्क पड़ेगा? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। दो कदम आगे बढ़कर उसने एक और मछली को उठाकर पानी में फेंक दिया और बोला, इससे इस एक मछली को तो फर्क पड़ता है। हम कौन सा फर्क डाल रहे हैं, बड़ा या छोटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सब थोड़ा थोड़ा फर्क लाए तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर आरजे अंजलि के साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

0: बोले तुम न मैं।
1: वेलकम अगेन, आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर आरजे अंजलि के साथ। एक दिन बादशाह ने बिरबल से पूछा, पान सड़े घोड़े अड़े विद्या बिसर जाए, अंगारों पर रोटी जले बताओ कोई उपाय। अर्थात पान क्यों सड़ता है, घोड़ा क्यों अड़ता है, विद्या कैसे लोप हो जाती है, अंगारे पर रोटी क्यों जलती है, इसका उत्तर सिर्फ 3 शब्दों में बताओ। बिरबल ने तुरंत उत्तर दिया, फेरा नहीं था। बादशाह ने कहा, साफ साफ बताओ। तो बिरबल बोली, जहांपना, पान न फेरने से सड़ जाता है, घोड़ा फेरे बिना अड़ियल हो जाता है, बिना दोहराए विद्या लोप हो जाती है, और अंगार ऊपर फेरे बिना रोटी जलकर खाक हो जाती है। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर आरजे अंजलि के साथ। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए रेडियो पालमपुर पर।

वेलकम अगेन, आप सुन रहे हैं रेडियो पालनपुर, आरजी अंजलि के साथ। बादशाह ने एक प्रश्न किया, वह क्या है जिसे सूरज चांद भी नहीं देख सकते। बारी बारी सबसे प्रश्न पूछा गया, सभी दरबारियों ने अपनी अपनी तरह उत्तर दिए। किसी ने बताया खुदा, किसी ने भगवान, तो किसी ने रूह। बादशाह किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हो पाए, सभी के उत्तर गलत थे। अंत में बादशाह ने बीरबल से पूछा, वह विनम्रता के साथ बोले, जिसे सूरज और चांद नहीं देख सकते हैं वह चीज है अंधकार। बादशाह प्रसन्नता से खिल उठे क्योंकि उत्तर सही था। आप सुन रहे हैं रेडियो पालनपुर आरजे अंजलि के साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर आरजे अंजलि के साथ। एक आदमी अपनी नई कार धो रहा था, तभी उसके पड़ोसी ने पूछा, आपने यह कार कब खरीदी? उस आदमी ने जवाब दिया, इसे मेरे भाई ने मुझे दिया है। पड़ोसी ने कहा, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। इस पर उस आदमी ने कहा, आपको यह सोचना चाहिए था कि काश मेरे पास भी ऐसा भाई होता। पड़ोसी की पत्नी उनकी बातचीत सुन रही थी। उसने बीच में टोक कर कहा, मैं सोचती हूँ काश वो भाई मैं होती। यह सोचने का कितना सकारात्मक नजरिया है। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर आरजे अंजलि के साथ। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए रेडियो पालमपुर के साथ।

वेलकम अगेन, आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर आरजे अंजलि के साथ। एक सिपाही बहुत बलवान था, बहुत बहादुर था, बहुत लड़ने वाला था। उसका घोड़ा भी वैसा ही बलवान, बहादुर और लड़ने का हौसला रखने वाला था। एक दिन सिपाही अपने घोड़े पर बैठकर किसी पहाड़ी के रास्ते से जा रहा था। अचानक घोड़े का पैर पत्थर से टकराया और उसकी नाल निकल गई। नाल निकल जाने से घोड़े को बहुत कष्ट हुआ और वह लंगड़ाकर चलने लगा। सिपाही ने घोड़े का कष्ट तो समझ लिया, परंतु उसकी विशेष चिंता नहीं की। बस वह उसे सोच में डूबा रहा, नाल बंधवा देगा। इस प्रकार आज कल के चक्कर में दिन निकलते गए, घोड़े का कष्ट दूर न हुआ। अचानक देश पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया और राजा की ओर से सिपाही को आज्ञा मिली। अब सिपाही क्या करता? इतना समय ही कहा था कि घोड़े के पैर पर नाल बंधवा पाता, परंतु लड़ाई पर तो जाना ही था, इसलिए वह उसी लंगड़ाते हुए घोड़े पर बैठा और दूसरे सिपाहियों के साथ चल पड़ा। दुर्भाग्यवश घोड़े

के दूसरे पैर से भी नाल निकल गई। पहले वह तीन पैर से कुछ चल भी लेता था, परंतु अब तो पैर क्या करता, किसी तरह आगे बढ़ता। देखते देखते शत्रु सामने आ पहुंचे। वे संख्या में इतने अधिक थे कि उनके सामने सिपाही के साथ ठहर भी न सके। वे फौरन अपने अपने घोड़े दौड़ाकर लड़ाई के मैदान से भाग निकले। परंतु वह सिपाही कैसे भागता, उसका लंगड़ा घोड़ा जहां का तहां खड़ा रह गया। सिपाही ने दुख से हाथ मलते हुए कहा, यदि मैं आजकल के चक्कर में न पड़ा रहता तो उसी दिन अपने घोड़े के पैरों में नई नाल बंधवा देता, तो आज इस विपत्ति में क्यों फंसता। इसीलिए कहते हैं, कल करी सो आज कर, आज करी सो अब। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर और जे अंजलि के साथ।

वेलकम अगेन, आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर आरजे अंजलि के साथ। एक दिन ऊंचा सुनने वाला एक 4 साल का लड़का स्कूल से घर लौटा तो उसकी जेब में उसके शिक्षक का एक नोट रखा था, जिस पर लिखा था, आपका टॉमी इतना मंदबुद्धि है कि वह कुछ नहीं सीख सकता, उसे स्कूल से बाहर निकाल दीजिए। उसकी माँ ने वह नोट पढ़कर जवाब दिया, मेरा टॉमी इतना मंदबुद्धि नहीं है कि कुछ सीख न सके, मैं उसे खुद पढ़ाऊंगी। और वह टॉमी एक दिन बड़ा होकर महान थॉमस एडिसन बना। वह स्कूल में केवल 3 महीने पढ़ सके थे और आज सबसे बड़े वैज्ञानिक में उनका नाम लिया जाता है। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं वापस मिलूंगी, कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए मेरे साथ।

0: वेलकम अगेन, आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर आरजे अंजलि के साथ। एक दिन अकबर बादशाह ने बिरबल से कहा, हमने न तो अप्सरा देखी है और न चुड़ैल, सिर्फ नाम सुने हैं। बिरबल, क्या तुम इन्हें दिखा सकते हो?
1: जी हाँ, मैं आपको अप्सरा और चुड़ैल दोनों दिखा दूंगा।
0: कब? बहुत जल्दी, न दिखा सके तो सजा मिलेगी, बादशाह ने कहा। बिरबल बुद्धिमान तो थे ही, उन्होंने विचार किया और एक गरीब कुलीन मेहनती किसान की स्त्री और एक खूबसूरत स्त्री को अपने साथ लिया और दरबार में हाजिर हो गए। बिरबल, यह क्या तमाशा है? हुजूर, ये अप्सरा है और ये चुड़ैल है।
1: क्या बात करती हो, यह सांवली स्त्री अप्सरा है और ये गोरी जो है वह चुड़ैल है।
0: बिरबल की बात सुनकर बादशाह चौंक पड़े। उन्होंने कहा, बिरबल तुम उल्टी बात कह रहे हो, वह सुंदरी तो अप्सरा लगती है।
1: नहीं हुजूर, बिरबल समझाने लगे, यह काली स्त्री साक्षात अप्सरा है जो अपने पति को सच्चे प्यार से आनंदित करती है, और यह चुड़ैल है जो जिस्म फरोशी करती है, लूटती है, इसका धंधा ही ऐसा है।
0: बादशाह को बिरबल का उत्तर तर्क संगत लगा और बादशाह ने बिरबल को इनाम दिया। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर आरजे अंजलि के साथ, कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

वेलकम अगेन, आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर आरजे अंजलि के साथ। एक चील का अंडा किसी तरह एक जंगली मुर्गी के घोंसले में चला गया और बाकी अंडों के साथ मिल गया। समय आने पर अंडा फूटा। चील का बच्चा अंडे से निकलने के बाद यह सोचता हुआ बड़ा हुआ कि वह मुर्गी है। उन्हीं कामों को करता जिन्हें मुर्गी करती थी। वह जमीन खोद कर अनाज के दाने चुगता और मुर्गी की तरह ही कुड़कुड़ाता। वह कुछ फीट से अधिक उड़ान नहीं भरता था क्योंकि मुर्गी भी ऐसा

ही करती थी। एक दिन उसने आकाश में एक चील को बड़ी शान से उड़ते हुए देखा। उसने मुर्गी से पूछा, उस सुंदर चिड़िया का नाम क्या है? मुर्गी ने जवाब दिया, वह चील है। वह एक शानदार चिड़िया है, लेकिन तुम उड़ान नहीं भर सकती क्योंकि तुम तो मुर्गी हो। चील के बच्चे ने बिना सोचे विचारे मुर्गी की बात मान ली। वह मुर्गी की तरह जिंदगी जीता हुआ ही मर गया। सोचने की क्षमता न होने के कारण वह अपनी विरासत खो बैठा। उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ। वह जीतने के लिए पैदा हुआ था, पर वह दिमागी रूप से हारने के लिए तैयार हुआ था। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? हमें उत्तर भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए 9512996688 पर, और या हमें DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर, और ईमेल भी कर सकते हैं radiopalampur@gmail.com पर। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए रेडियो पालमपुर के साथ।

वेलकम अगेन, आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर आरजे अंजलि के साथ। एक 20-22 साल का नौजवान सुपरमार्केट में दाखिल हुआ। कुछ खरीदारी कर ही रहा था कि उसे महसूस हुआ कि कोई औरत उसका पीछा कर रही है, मगर उसने अपना शक समझते हुए नज़रअंदाज किया और खरीदारी में मशरूफ हो गया। लेकिन वह औरत लगातार उसका पीछा करती रही। अब की बार उस नौजवान से रहा ना गया। वह अचानक उस औरत की तरफ मुड़ा और पूछा, माँ जी खैरियत है? औरत बोली, बेटा आपकी शक्ल मेरे मरहूम बेटे से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। मैं ना चाहते हुए भी आपको अपना बेटा समझते हुए आपके पीछे चल पड़ी और आपने मुझे माँ जी कहा तो मेरे दिल के जज्बात और खुशी बयां करने लायक नहीं। औरत ने यह कहा और उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। नौजवान कहता है कि कोई बात नहीं माँ जी, आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। वो औरत बोली कि बेटा क्या आप मुझे एक बार फिर माँ जी कहोगे? नौजवान ने ऊंची आवाज में कहा, जी माँ जी। पर उस औरत ने ऐसा बर्ताव किया कि जैसे उसने सुना ही ना हो। नौजवान ने फिर ऊंची आवाज में कहा, माँ जी। औरत ने सुना और नौजवान के दोनों हाथ पकड़कर चूमे, अपनी आंखों से लगाए और रोते हुए वहां से रुखसत हो गई। नौजवान उस मंजर को देखकर अपने आप पर काबू नहीं कर सका और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी खरीदारी पूरी करे बगैर ही वापस चला गया। काउंटर पर पहुंचा तो कैशियर ने 10,000 का बिल थमा दिया। नौजवान ने पूछा, 10,000 कैसे? कैशियर ने कहा, 800 का बिल आपका है और 9,002 आपकी माँ की है, जिन्हें आप अभी माँ जी कह रहे थे। वह दिन और आज का दिन, नौजवान अपनी असली माँ को भी मौसी कहता है। तो कैसी लगी ये कहानी जरूर बताइएगा। इसकी शुरुआत और अंत कितने अलग है, नहीं? आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमें आपका प्रतिभाव भेजिए। हमें मेल कीजिए radiopalampur@gmail.com पर। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

0: पक्का पालनपुरी न्यू ओला केटले ट्यून रहे मस्त रहे सामर्थ्य रहे ओनली ऑन 90.4 एफएम रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।
1: इतनी सी बात